0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নিখিল কুমার। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है।

0: मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।

0: अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएज इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्त, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौते

0: वादों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं त्रिनेनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में।

हम अब से कुछ ही देर में शुरू करेंगे मधुर गीतों का मनभावन सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम सबरंग, 1:40 पर कार्यक्रम तरन्नुम, दिन के 2 मिडडे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद दिन के 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत का। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

अगला गाना है दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत वंस अपॉन अ टाइम मुंबई फिल्म से। संगीत है प्रीतम चक्रवर्ती के, बोल है इरशाद कामिल के और आवाज है मोहित चौहान की।

हमारा अगला कार्यक्रम है बंदगी के गीत और भजन, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर गीत मनोरंजन, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम गुंजन। 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद 2:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेग 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का पहला गाना है श्री कृष्ण भक्ति एल्बम से सुमन की आवाज में।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दिब्रुगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का पहला नगमा है हरिहरन की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्यधिक

0: आधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले

0: को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय

0: वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका की तरफ।

इसी के साथ होता है आज के प्रसारण के अंतिम कार्यक्रम गीतिका की समाप्ति। कल फिर होगी इसी समय मुलाकात। तब तक के लिए मैं त्रिनेनी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार शिल्पा जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे फोन इन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
2: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत ज़रूरी है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जागरूकता इसके बारे में फैलाएं, जो लोगों को नहीं है उनको इससे अवगत कराएं, और अगर जिन लोगों को है तो जैसा आपने सही कहा, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बीमारी से कैसे हम लोगों को डील करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने आज के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस पे ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरी तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया, एक अलग तरीके का एनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो RBCs बन रहे होते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से, या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से, जो RBCs होते हैं वो आमतौर पे 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ RBC बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हीमोलिटिक अनीमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है, जो RBCs बन रहे हैं, वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा।
1: तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये हो जाती है?
2: देखिए, ये बीमारी जो है, ये जैसा मैंने

0: बताया, ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है, ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि ये जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी। और एक एक कण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत में माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं, तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि RBC के कण बनाती हैं, वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेट बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त है थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
1: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो क्या हम कैसे डायग्नोज करें, मतलब क्या कुछ लक्षण हैं कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
0: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में RBC जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो हैं डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में RBCs बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है, और क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत महसूस होगी, ये 6, 8, 9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में। तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी, बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से क्योंकि खून उसका कम है। क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा। 6 महीना 8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चे, जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे थैलेसीमिया हो सकता है, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है, इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना ज़रूरी है।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर, बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है, क्योंकि जीन्स जो हैं ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फ़र्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है, जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फ़र्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। तो जो अगर एडोलिसेंट हैं या बड़े लोग हैं, उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या ज़रूरत से ज़्यादा, रोज़मर्रा की दिनचर्या से ज़्यादा जो काम करते हैं उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स जो माँ बाप में हैं उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ, एक चीज़ है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी। लेकिन जब तक नहीं ये संभव है, तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जांच करा सकते हैं, अपनी खुद की जांच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर हैं, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं और आप उस हिसाब से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है, मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है कि जेनेटिक
0: डिसऑर्डर। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघुवीर सिंह बोल रहे हैं मैडम
0: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
1: हाँ नमस्कार रघुवीर सिंह जी, बताइए।
2: तो जैसे मतलब कोई आदमी है, जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम बढ़ा सकते हैं खून को? अगर वो नहीं है तो अंग्रेज दवाई कोई बताइए सर, बस यही पूछना है।
1: देखिए, जो आप कह रहे हैं कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है। तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है, तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे एक थैलेसीमिया है, तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा।

0: आप आयरन लीजिए या अलग चीज़ें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से या किसी को पाइल्स होती हैं या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन के मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार, सेब, केला, ये सब फल ले सकते हैं, गुड़, चना। डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको, अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया, या आयरन, ये सेब, सन, अनार, ये सब चीज़ें लीजिए, तो खून की में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस हैं, या उसको बच्चे को आगे ना हो तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर हैं, तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जो 25 से 50% हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है, बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में, पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा ज़रूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है, या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए, जैसा आपने कहा शिल्पा जी, कि अगर नहीं है, बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है, और थैलेसीमिया अब बच्चे को है, तो फिर इनका, क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है, तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत रहती है, और फिर समय समय पे इन्हें खून जिंदगी भर चढ़ाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है, क्योंकि खून जो है आदमी का ही चढ़ता है, और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतजाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को हो तो जेनेटिक है, तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है, या बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं?
0: देखिए, जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक ना हीमोग्लोबिन F होता है, तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो A में चेंज हो जाता है, और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो वो जैसा मैंने बताया, जब अपना हीमोग्लोबिन बताया, वो 3 से 4 महीने रहता है, तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 9 महीने पे आम तौर पे, अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में, बच्चों में नहीं बन रहा है जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6 से 9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये 1 साल 1.5 साल की उम्र पे भी पता चल सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है, तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं। हालांकि साधारण CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, या हीमोग्राम होता है, जो कि कॉमनली एनीमिया के लिए कराया जाता है या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं। तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
0: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफ़ी सफल है। पिछले, मैं कहूँगा, 20-25-30 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रहे हैं।

0: तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही रेड क्रॉस जो है वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से सब मरीजों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। और ये मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफ़ी जो है मदद करते रहते हैं। और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए, और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
1: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सकें वो?
0: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में, करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट्स का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज़्यादा मरीज जो है वयस्क मरीज, बच्चे तो हैं ही इतने, 300 350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज़्यादा मरीज जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है, और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरियाज से, दूर दराज के एरिया से हमारे पास आते हैं, और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में मतलब 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था, और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफ़ी रहती है, और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है, और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी, तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आए तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी हमारे लेडी हार्डिंग में, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका। कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी, ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा, ये सारी सुविधाएं और जितनी जांचें होती हैं, क्योंकि हर बार जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे, तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
1: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं, जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
0: देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा या प्रत्यक्ष रूप से आएगा ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो सकता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहें, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन ज़िंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, ज़िंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि इन्हें कोई दिक्कत है। तो 50 साल 60 साल पर कभी जाँच कराइए आपने, तब आपको हो सकता है पता चले, और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भी हो सकता है कि आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन यह है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
1: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर है उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
0: देखिए ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूँगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30 40 50 साल की उम्र तक कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उसके बाद कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सांस फूलना या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की, या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते हैं लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं? मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, या उस पर भी इफेक्ट आता है?
0: देखिए अगर इनका, हर मरीज का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसका अपना एक

0: कितने दिन में आरबीसी जो हैं, रेड सेल्स जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एक बन जाता है 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे। तो उस पर अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे। आमतौर पे ये 12 से 16, 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे, और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियाँ इनकी नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज करके। तो ये चीज़ तो दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो ये इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी सुचारू रूप से अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज का है नियमित रूप से अगर मिलता रहता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है तो ये बच्चे हालांकि अब तो बड़े हो गए, और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, आते हैं अपना करते हैं और खून चढ़वा के अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत तो रहती है क्योंकि 15 दिन पे आना पड़ता है खून चढ़वाने के लिए, कोई साथ में आता है क्योंकि एडमिशन बनता है, और खून चढ़वाने के भी अपने रिस्क रहते हैं और दिक्कत होने की संभावना रहती है कुछ ना कुछ।
1: जी, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108023421082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं 1 से 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में हमारे मेल आईडी पे health@delhi.gmail.com पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, रेडियो डॉक्टर शो, मेन कॉज ऑफ थैलेसीमिया, विच एज इज थैलेसीमिया एंड व्हाई कांट अ थैलेसीमिया टेक आयरन, रेनबो लवर्स बॉय नेम हितेंद्र दास फ्रॉम असम।
2: हाँ हितेंद्र दास जी, बहुत ठीक कहा आपने। तो जैसा मैंने बताया है कि थैलेसीमिया अगर मेजर है या ज़्यादा सीवियरिटी का है तो जल्दी महसूस हो जाता है, तो आपको नवजात शिशु में 6 से 9 महीने पे उम्र पे पता चल जाता है। बाकी जैसा है, आयरन इन लोगों में इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था शुरू में, ये एक ह्यूमोनिटिक अनीमिया है। तो इसमें क्या होता है कि RBC बन रहे हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ये ग्लोबिन चेन्स हैं वो ख़राब होती हैं इसमें, और वो जीन्स के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो आयरन की कमी की वजह से इसमें अनीमिया नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है उसमें, इसमें हीम आयरन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वाली प्रॉब्लम है। तो वो चेन्स जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है, RBCs जो हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आयरन की कमी नहीं होती। दूसरा, इन पेशेंट्स में हम हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 3 हफ्ते पे अगर हम खून चढ़ा रहे हैं

0: तो ये जो खून चढ़ता है ये तो नॉर्मल आदमी का खून चढ़ता है, तो ये आयरन रिप्लीट होता है, इसमें आयरन अच्छे खासा मात्रा में होता है। तो इनका अपने शरीर का आयरन जो कि पुराने आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी हम खून देते हैं उसका आयरन इनमें होता है, तो इसलिए ये इनमें आयरन हम लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं हम इन्हें हिदायत देते हैं कि ये ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि थैलेसीमिया के मरीजों को आयरन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनमें नहीं होता है यूजुअली आमतौर पर।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का, ये लिखते हैं सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में।
0: देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी विधि है, एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, एचएलए की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है, इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रिसिपियंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे जैसा आपने पूछा है, तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो वो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो 100 लोगों में 50 लोगों में हम मान करके चल रहे हैं या 40 लोगों में मान के चल रहे हैं अगर हम 40% कह रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य के लिए तो उसमें वो अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, नहीं सक्सेस है तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड हो जाता है, तो थैलेसीमिया में कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल होने में दिक्कत होती है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोगिंदर सिंह का, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जोगिंदर दैया सोनीपत से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को इंटरमीडिएट थैलेसीमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है, मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा।
0: देखिए अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज को देखनी पड़ेंगी कि क्या परेशानियां हो रही हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे ज़रूर पूछें और अब वो आपको ज़रूर राय देंगे, अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, खर्चा तो एक चीज़ है ही लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए, अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले ज़रूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइज़ नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको एक बार इसका सोच लेना चाहिए, तो डॉक्टर साहब से जरूर परामर्श करें और वो आपको इसमें गाइड कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा, तो ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है।
0: देखिए अब बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पे कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में क्योंकि हर 3 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर 2 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार

0: स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज़ को मिल रहे होते हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हफ्ते से, हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएं होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है। और इसलिए हमें मरीजों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानी हो रही हैं। तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना, वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है। वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसमें आप कहेंगी तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई एच पी एल सी रिपोर्ट शोज़ आर बी सी काउंट 3.8 एच बी इज 8.4, इट इज़ थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
0: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, या कुछ आपने पार्टली बोली है, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराई है एक बार देखना पड़ेगा। उसमें एच पी एल सी रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन A, A2, F, ये सब चीज़ें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है। तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है, टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना HPLC कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और RBC की रिपोर्ट और HPLC की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे ज़रूर एक बार आए लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें HPLC में, मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे।
1: तो इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे PRBC का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
0: मैं मानता हूं कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर थैलेसीमिया रोगियों में, देखिए हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए। तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8, 8.5 के आसपास आ रहा है तो ज़रूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा। इस पर खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो है रेडियो के, आकाशवाणी के माध्यम से, मैं ये राय नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपका 8 है तो आज खून चढ़वाना ही है या आपका 10 है तो आज खून नहीं चढ़वाना है। देखिए मैं बहुत साफ बात बताऊं, अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और आज 10 हो गया है तो हो सकता है आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन मान लीजिए आपका कल तक 11 ही ग्राम खून था और आज वो 10 या 10.5 आ रहा है तो आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कई चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपको खून चढ़वाना है या नहीं। थैलेसीमिया में मैंने जैसे बताया, जो लोग थैलेसीमिया मेजर हैं, जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उनका हम कोशिश करते हैं कि 2, 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक अगर कम हो जाता है तो हमें उन्हें खून चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी उनकी ग्रोथ पे या उनके काम करने में दिक्कत नहीं हो।
1: थैलेसीमिया पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस बीमारी की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? क्या आम ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है या कुछ डिफरेंट टेस्ट है इसके लिए?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी आप। इसमें आम ब्लड टेस्ट से हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हमें इसका जो है HPLC यूजुअली हम लोग कराते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है, उसी से ही इसको जो है, या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग कराते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि कितना जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कितना जो है एबनॉर्मल है।
0: और इसका इलाज कितने प्रतिशत मतलब सफल है, मतलब कितने प्रतिशत वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जो इलाज ले रहे हो?
1: देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हमारे पास कई इलाज हैं संभव, जिसकी वजह से जैसे खून चढ़ना है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन खून चढ़ने से आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जैसे कि बात हुई थी, तो उसको भी हमारे पास पहले एक ही दवा आती थी। आज की तारीख में हमारे पास 3 दवाएं हैं और वो मुंह से ली जा सकती हैं, पहले तो हमें उसे इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी हमारे पास एडवांसमेंट हुए हैं और इसमें रोगी जो हैं उनको, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको नियर नॉर्मल जो लाइफ है वो अपनी ये सुचारू रूप से कर सकते हैं, व्याप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है सरकार ने जो है डिसेबिलिटी में भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया है, उससे भी इन लोगों को काफ़ी जो है आराम मिला है और ये लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए मेहनत की है और आज की तारीख में थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है, और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं थैलेसीमिया सर्टिफिकेशन होता भी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन मरीज़ों को मतलब नॉर्मल लाइफ अपना खुद

0: स्वावलंबी बन करके अपना खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और अपना सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आज की तारीख में।
1: तो इसका जो इलाज है वो महंगा है या इजी टू अफोर्ड है? मतलब
0: देखिए, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो इजी टू अफोर्ड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं और दवाइयाँ लेनी भी ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं और रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, साल दर साल लेनी होती हैं। सिर्फ ब्लड चढ़वाना और ब्लड को चिलेट करना, जो आयरन है उसको चिलेट करना या उसको कम करने की दवाएं, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी क्योंकि आयरन काफ़ी जाता है, उससे आयरन शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है, तो उस अंगों में दिक्कतें जो होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन की दिक्कत होती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती हैं, थायराइड की, डायबिटीज़, ये सब दिक्कतें जो हैं इनका भी इलाज हमें करना पड़ जाता है। तो अगर आप मानेंगे तो कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है महंगा तो हो ही जाता है, तो अगर आपके पास कई बीमारियां हो जाएंगी जिनमें कि आयरन जहां जहां जमा हो रहा है, जिस जिस अंग में जमा हो रहा है, उसकी हमें अगर इलाज करना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सस्ता होगा। जो इवन हमें इन फिल्टर इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो खून चढ़ता है वो साधारण खून नहीं होता है, ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड खून चढ़ता है, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो सरकार, हमारे तो सरकारी अस्पताल, इसलिए सरकार खर्चा बियर करती है, और नहीं तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट डिप्लीटिंग फिल्टर्स यूज़ करते हैं उसका एक फ़िल्टर का कॉस्ट ही 1800-2000 रुपए है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो खर्चा सस्ता नहीं है। इसीलिए किसी अस्पताल से या एनजीओ के तहत अगर इन्हें मिल रहा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा रहता है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मेमन सर, थैलेसीमिया माइनर, क्या आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि मैं थैलेसीमिया के लिए कह चुका हूँ कि आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। तो अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो भी आयरन सप्लीमेंट जब तक बिल्कुल आयरन डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए, ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। कायदे से तो थैलेसीमिया माइनर में भी कुछ हीमोलिसिस या कुछ RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इसलिए उनको आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन ज़्यादा ही होता है। तो जब तक बिल्कुल ही ये ना पता हो कि हाँ आयरन कम है शरीर में, तभी लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज लेना नहीं चाहिए।
1: तो क्या इससे जुड़ी कोई रिसेंट रिसर्च है कि जिससे लगे कि हाँ इस आगे नहीं होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी नई दवाइयां आ रही हैं जिनसे लेने से, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, कुछ लोग किसी किसी चीज़ का सेवन करते रहते हैं, जिनसे आपका आयरन का, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और जो आपके अपने शरीर में बन रहे होते हैं RBCs, जो रेड सेल्स बन रहे होते हैं, लाल कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, उनकी रहने की अवधि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको खून उतनी जल्दी नहीं चढ़वाना पड़ता है। तो ये कई नई दवाइयाँ आई हैं अभी हाल में, पिछले 3-4 साल में, जिससे कि हम ये संभव प्रयास कर सकते हैं कि इनका खून अगर 14 दिन पर चढ़ रहा है तो हो सकता है कि 17 दिन पर चढ़े या खून की चढ़ाने की मात्रा कम हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने बताया था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, तो क्या उससे ये, जैसे डिजीज जेनेटिक है, तो क्या उससे ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसको ये नहीं होगा अगर इंसान अगर ये करा लेता है तो?
0: नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस मरीज के लिए तो ठीक है, लेकिन जीन्स नहीं चेंज होती है, तो आप ट्रांसप्लांट करके जो है बोन मैरो बदलते हैं, जीन्स नहीं चेंज होती हैं, तो जीन्स तो वही रहेंगी, तो आपको ध्यान आगे की नस्ल के लिए तो देना पड़ेगा।
1: कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आगे ये चीज़ ठीक हो जाए, आगे जनरेशन में ना हो?
0: देखिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो कैरियर है थैलेसीमिया का, वो जीन जो एक है, अंश है, तो उससे मैरिज जो है वो नॉन कैरियर करे, जो कि नॉर्मल आदमी है जिसमें बिल्कुल भी कैरियर की अवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा।
1: तो आपने वैसे ये बताइए हमारे श्रोताओं की, जिन लोगों को थैलेसीमिया है तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए?
0: देखिए, थैलेसीमिया रोगी जो है, मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब ये शुरू किया था हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में वयस्कों का क्लिनिक, तो दूर से मुरादाबाद, बड़ौत, इधर जगह से लोगों के शाम को फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, खून चढ़ रहा है इस मरीज़ का, ये थैलेसीमिया का है, तो मैं इनको ये दवा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? तो बहुत ही असमंजस होता था कि भाई ये दवा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है उन डॉक्टर साहब की भी कि वो पूछ रहे हैं, तो मैं ये एक आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया रोगी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है और इसलिए उन्हें खून संबंधित बीमारियाँ होने की संभावना रहती है, और थैलेसीमिया से ग्रस्त होने की वजह से उनको अपने

0: बहुत ज़रूरी ये है कि अपना जो है जब भी अगली बार जांच कराएं तो उसमें ध्यान दें कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, और अपने बच्चों में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके बच्चों में या आपके बच्चों के जो बच्चा हो तो उसे थैलेसीमिया हो। तो आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पे मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में तो ज़रूर देखें और ये सोचें, अगर आपकी शादी नहीं है तो अपने बारे में भी स्टेटस क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी, अगर हम लोग सब जागरूक रहेंगे और अपना हमें पता होगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं हैं, मैं मेजर को तो पता ही है, जो थैलेसीमिया माइनर अगर हमें पता है कि हम नहीं है तो कम से कम हम आगे आने वाली नस्ल को तो थैलेसीमिया जैसे रोग से बचा सकते हैं, और तभी जा करके धीरे धीरे कम होगी ये बीमारी और हमारा जो इतनी परेशानियाँ हैं वो किसी को हमारे घर में नहीं झेलनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबको स्वस्थ रहना चाहिए, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो कि प्रिवेंट की जा सकती है और जिसके लिए सरकार काफ़ी रोकथाम कर रही है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी नेस्ट्रॉट और काफ़ी जांचें होती हैं, तो उसका ज़रूर जांच कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं अपने जो जच्चा है उनका, जिससे कि ये सारे टेस्ट हों, और अपनी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जब भी अगली बार कराएं तो डॉक्टर साहब से ज़रूर एक बार थैलेसीमिया के बारे में पूछें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप आगे आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया जैसे बीमारी से बचा सकें।
1: तो श्रोताओं, थैलेसीमिया से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ भी लड़ी जाती है। अगर समय रहते जांच हो और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health@delhi.gmail.com। दोस्तों, आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओं, आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बीमारी कोई भी हो, जागरूकता जरूरी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में

0: राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुँच चुके हैं। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई, चिरुथाइगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये अमेरिका के व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जेन का ये समय है, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं स्पॉन्सर प्रोग्राम ये लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशिष्ट पदार्थ या पदार्थों के समूह के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशीलता के स्तर की विशेषता होती है। ये पदार्थ जिन्हें एलर्जी कहा जाता है अति संवेदनशील व्यक्तियों में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। एलर्जी टिक्स, मोल्ड, भोजन, पराग, पालतू जानवर और धूल के कणों में पाई जा सकती है। शरीर में एलर्जी की बीमारी विकसित करने की आनुवंशिक प्रकृति को एटोपी के रूप में जाना जाता है। जब एलर्जिस एटोपिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो एक प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है जो आगे चलकर एलर्जी और सूजन की ओर ले जाती है। एलर्जी किसी विशिष्ट एलर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो एलर्जी रिएक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही एलर्जेंस शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर द्वारा एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मस्तूल कोशिकाओं को प्रति एंटीबॉडी का जुड़ाव होता है। मस्तूल कोशिकाओं की प्रतिक्रिया हिस्टामिन को मुक्त करते हैं। यदि एलर्जी के कारण हिस्टामिन निकलता है तो इसे जलन और सूजन हो सकती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। अब आपको बता दें कि सबसे आम एलर्जीज क्या है दोस्तों। पहले तो पेंसिलिन से एलर्जी। पेंसिलिन के कारण होने वाले एलर्जी की प्रतिक्रिया एनाफिलैक्सिस से लेकर हल्के दाने तक हो सकती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। मीट एलर्जी। पोल्ट्री उत्पाद और बीफ जैसे मांस के कारण एक व्यक्ति एलर्जी की प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकता है। इस एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण को विकसित होने के कुछ समय लगता है। पराग कण, पॉलन, ये ऐसे कण हैं जो पेड़ और घास द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर ये कण सांस के जरिए शरीर के भीतर पहुंच जाए तो इससे सरदर्द, छींक और गले में जलन हो सकती है। कॉस्मेटिक एलर्जी। कई कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे मॉइस्चराइजर, शैम्पू और अन्य चेहरे के उत्पादन एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण में सूखापन और सूजन शामिल है। डस्ट माइट्स। ये जानकर आपको बहुत हैरानी हो सकती है कि लेकिन कमरे के ज्यादातर कोनों में डस्ट माइट मौजूद है। बेडशीट्स, मैट्रेस, पर्दे और तकिए इनके घर है, इसीलिए आप हमेशा अपना घर का साफ सफाई ठीक से करें। दोस्तों, दुनिया भर में ज्ञात सबसे आम एलर्जी से एक प्रोटीन है जो जानवरों द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलती से इसे अंदर ले लेता है तो इसे घरघराहट हो सकती है। खाद्य एलर्जी। किसी व्यक्ति को खाद्य एलर्जी भी हो सकती है दोस्तों। ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दूध, काजू, अंडे, मेवा आदि जैसे डेयरी उत्पादों से एलर्जी हो सकता है। अगर कोई कीट व्यक्ति को काटता है तो एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कीड़े का काटना भी खतरनाक हो सकता है। कीड़ों के कुछ काटना घातक भी हो सकता है। अगली एलर्जी है दोस्तों मोल्ड्स। ये फंगस जो घर के अंदर और नम स्थानों में आसानी से पाई जा सकती है। मोल्ड से एलर्जी जलना, छींकना और अंततः अस्थमा का कारण बन सकती है। परफ्यूम की खुशबू से भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। ये सबसे आम एलर्जीनों में से एक है जिसे त्वचा पर यानी अपने स्किन पर सोरनेस हो सकता है। एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक कॉकरोच के कारण हो सकता है जो घर में इधर उधर भाग रहे हैं। कॉकरोच द्वारा छोड़े गए श्वास संबंधी एलर्जी से व्यक्ति को अस्थमा का विकास हो सकता है। कॉकरोच एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को उचित धूप नहीं मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है, एलर्जी एक विशेष एजेंट के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। लक्षणों में एलर्जिक राइनाइटिस, छींकना, साइनसाइटिस, सांस की तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़ना, खांसी, लाल चकते जो उठे

0: हुए है और खुजली, सूजे हुए होंठ, जीभ, आंखें और चेहरा, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त शामिल है।
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
0: बीमारी और शुष्क और फटी त्वचा की भावना। एलर्जी के लक्षण तुरंत प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं। ये कुछ घंटों से लेकर 10 दिनों के बीच कहीं भी स्पष्ट हो सकता है। उपचार के साथ भी लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। एलर्जिन के लगातार संपर्क से बचने से इसे बारामासी बनने से रोका जा सकता है। एक व्यक्ति एलर्जी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों को सीमित करना संभव है। एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध है। एलर्जी की रोकथाम के लिए व्यक्ति को स्वयं को एलर्जी से बचने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पालतू जानवर है तो एलर्जी से खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सतर्क रहने से भविष्य में एलर्जी से बचा जा सकता है। एंटीहिस्टामिन, ये दवाएं हिस्टामिन क्रियाओं को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। एक डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी की सलाह भी दे सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के पुनर्वास के लिए डॉक्टर द्वारा इस चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। एलर्जीज मौसमी हो सकते हैं, यानी सीजनल हो सकते हैं, यानी हे फीवर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल चीजें करके एलर्जी होने से बच सकते हैं, जैसे एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क को कम करना, इंडोर हवा की शुद्धता बनाए रखना, पॉलन ग्रेन्स, पराग की मात्रा अधिक होने पर बाहर के संपर्क से बचना। ऐसे कई इलाज है दोस्तों, आप घर पर भी कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप पहले अपने एलर्जेंस को पहचानें और बाद में उसके संपर्क से आने में अपने आप को बचाएं। तो ये थी दोस्तों एलर्जीज के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आकाशवाणी
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम अल्फा जन लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। और आज अल्फा जन में थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, शुक्र है, शुक्रवार है, भगवान का शुक्र है कि शुक्रवार है। और हम हैं, आप हैं, और बातें होंगी कुछ इधर उधर की, और क्या आपका वीकेंड का प्रोग्राम है सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी पेटियां कसकर बांध दीजिए अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का फुल डोज और पूरी गपशप बातें लेकर आपके साथ मैं रहूंगा पूरे एक घंटा, और बातें होंगी आपके साथ पूरे एक घंटा तो नहीं, क्योंकि 4:15 हो गए, तो पौना घंटा तो लगभग है ही आपके साथ, तो दिल को थोड़ा सा तसल्ली तो दे ही सकते हैं, कोई बात नहीं।

वीकेंड के प्लान बनना शुरू हो गया है, तो आपको बताते हैं कि वीकेंड में अगर आप फिल्मों का शौक रखते हैं तो वीकेंड में कौन कौन सी फिल्में जो 28 मई को, जी हां, आज के दिन सिनेमा घरों में रिलीज हो गई हैं, और अगर आप उनका शौक रखते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी फिल्में देख सकते हैं। जी हां, 28 मई के दिन, आज के दिन सिनेमाघरों में मनोरंजन का पूरा पैकेज जो है ना, ये रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड की एक्शन पैक्ड फिल्म से लेकर बॉलीवुड की फिल्मी ड्रामा तक कुल 6 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, और हो भी गई हैं। अगर रिलीज होने वाली क्या

अरे हो गई हैं भाई। हाँ, आप इंतजार करते रहते हैं और फिल्में रिलीज हो जाती हैं। शाम का प्रोग्राम बनाएंगे आपकी, हाँ शाम को मूवी देखने जाएंगे। अरे भैया बहुत देर हो जाती है। तो आपको, अगर आप मूवी लवर हैं, तो वीकेंड पर फिल्मों के साथ साथ अगर समय बिताना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या फिर अपने दोस्त के साथ या दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, दादी की शादी, ये इसके अंदर जो मेन लीड रोल में हैं वो हैं नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर साहनी, जो पहली बार फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं, और आर सार्थक कुमार सादिया जो हैं इसमें मेन करेक्टर हैं इसमें और मेन रोल में हैं। और ये जो फिल्म है ये कॉमेडी ड्रामा फिल्मी एंटरटेनर है। और कहानी की अगर बात करें तो कहानी फिल्म जो है एक मज़ेदार इमोशनल सफ़र पर ले जाती है। दरअसल घर की बुजुर्ग जो है दादी यानी कि नीतू कपूर दोबारा शादी करने का फैसला करती हैं, और इस फैसले से पूरे परिवार में हलचल मच जाती है, और हलचल मच जाती है तो फिर क्या होता है भाई। तो वो आप फिल्म में देख सकते हैं कि हलचल मचेगी तो क्या होगा। जाइए वीकेंड पर प्रोग्राम बनाइए।

अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आज 8 मई के दिन कौन कौन सी फिल्में, जी हाँ 8 मई के दिन कौन कौन सी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं। अगर आप वीकेंड का प्लान बना लिया है या बनाने जा रहे हैं और फिल्म देखने का शौक रखते हैं तो फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। और जैसे अभी हमने बताया कि दादी की शादी जो रिलीज हो रही है आज ही के दिन, और नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर साहनी, आर सार्थक कुमार सादिया इसमें हैं। और दूसरी जो फिल्म है, दूसरी फिल्म है वो है डग डग। जी अल्ताफ खान इसमें एक्टर हैं, अल्ताफ खान, ऋत्विक पारेक। और ये जो फिल्म है ये ड्रामा मिस्ट्री है। यह फिल्म समाज की जो मान्यता है उसके ऊपर कटाक्ष करती है। एक गांव में एक्सीडेंट के बाद एक मोटरसाइकिल जो डुग डुग पुलिस को मिलती है और वो पुलिस उसे जब्त कर लेती है, लेकिन वह बार बार रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट वाली जगह पर वापस मिल जाती है। गांव वाले इस चमत्कार को मानते हैं या मोटरसाइकिल की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उसे एक चमत्कार समझकर एक मोटरसाइकिल की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो यही इस फिल्म के अंदर दिखाया है। बाकी मैं पूरी फिल्म अगर आपको उसकी स्टोरी बता दूंगा तो फिर देखने का मजा क्या रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप भी जाइए और इस फिल्म का मजा लीजिए, इंजॉय कीजिए। और क्या है इस फिल्म में ये तो वहीं जाकर आपको पता लगेगा। फिलहाल आपके लिए अगला गाना जो मैं चला रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं, वो चला रहा हूं कुमार सानू की आवाज में। तो ये रहा ये प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि आज फ्राइडे है। और वीकेंड में अगर आप मूवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैंने अभी आपको, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, मैं उनको बता दूं कि आज यानी कि 8 मई को बहुत ही मज़ेदार फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट की पूरी जो है ना, पूरा पैकेज आया हुआ है। दादी की शादी की हमने अभी बात की, जो कॉमेडी ड्रामा फैमिली इंटरटेनर है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिधिमा कपूर सानी हैं और आर सार्थक कुमार और सादिया हैं। ये फिल्म एक मज़ेदार और इमोशनल सफ़र पर ले जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। और डग डग, जिसके अंतर्गत जो एक्टर हैं, अल्ताफ खान है, ऋत्विक पारिक हैं, और ये ड्रामा मिस्ट्री है। और इसके बारे में मैंने बताया कि ये मान्यताओं को के ऊपर कटाक्ष करती है। एक गांव में एक्सीडेंट के बाद एक मोटरसाइकिल जो डग डग पुलिस को बरामद होती है, और ये बार बार रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट वाली जगह पर मिल जाती है, और गांव वाले इसे चमत्कार मानते हैं और उसकी पूजा करनी शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। और अगली जो फिल्म है वो है मैं एक्टर नहीं हूँ। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है और ये ड्रामा फिल्म है। इसकी कहानी जो है वो है, इस फिल्म में एक मुंबई के एक एक्टर, फ्रैंकफर्ट के एक रिटायर्ड बैंकर के बीच वर्चुअल एक्टिंग सेशन के दौरान पनपे अनोखे रिश्ते की कहानी दिखाई गई है। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये भी फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हो चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कौन सी फिल्म देखनी है। कॉमेडी का अगर चाह रखते हैं, ड्रामा का या फिर मिस्ट्री का, तो उसमें से आप फिल्में चूज करके वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ देख सकते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, और अल्फा जैन में आज जो है आज हम लेते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आप वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं और मूवी का शौक रखते हैं तो कौन कौन सी मूवीज आज रिलीज हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगली जो हमारी लिस्ट में फिल्म है वो है आखिरी सवाल। जी हाँ, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन फिल्म का नाम है आखिरी सवाल, और जिसके एक्टर्स हैं संजय दत्त, रीधा चौधरी, नमशी चक्रवर्ती और अमित साध। ये पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और संजय दत्त एक बार फिर अपने पावरफुल अंदाज में वापसी कर रहे हैं और फिल्म राजनीति, न्याय और सच की परतों को खोलती है, और ये डायलॉग ओरिएंटेड थ्रिलर है जो व्यवस्था के भीतर छिपे भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल पर आखिरी सवाल खड़ा करती है। तो अगर आप संजय दत्त के फैन हैं तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, और अल्फाजन में आज हम बात कर रहे हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आज शुक्रवार है, भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है, और आज शुक्रवार को कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई इसके बारे में हमने आपको बताया, विस्तार में नहीं ब्रीफ में बताया। मैं आपको एक बार ही उनकी समरी बता देता हूँ कौन कौन सी फिल्में हैं जो आज रिलीज हुई हैं। दादी की शादी, जिसमें नीतू कपूर हैं, कपिल शर्मा है, रिधिमा कपूर साहनी है, आर सार्थव कुमार है, सादिया हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फैमिली इंटरटेनर है। और अगली फिल्म जो रिलीज हुई है वो है डग डग, अल्ताफ खान और ऋत्विक पारेख इसमें एक्टर्स हैं। और अगली फिल्म जो है वो है मैं एक्टर नहीं हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें एक्टर

है और अगली फिल्म जो है वो है आखिरी सवाल, जो संजय दत्त और उसमें है नमिशी चक्रवर्ती और अमित साध हैं और ये फिल्म भी रिलीज हुई है। तो दोस्तों आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं ये आपने डिसाइड करना है और एंजॉय कीजिए वीकेंड को। और मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली के मौसम का क्या हाल है। तो दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो आज यानी कि 8 मई 2026 को तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है और जो सूर्य अस्त है वो शाम 7 बजे होगा। नमी का स्तर 31.1 है और वहीं वायुमंडल दबाव 1008 के स्तर पर है। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक इस वक्त स्मूथ है। और बाकी आपके पास कोई ट्रैफिक की जानकारी है, कहीं कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो बता सकते हैं कि अगर कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं डाइवर्जन है तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा ट्रैक।

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पानी पीते रहें, और मौसम का जैसे एकदम से सीजनल चेंज हो रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी हल्का हल्का फीवर का अगर लगता है तो आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। अदरवाइज खुद मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि आप कई बार खुद दवा लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और फिलहाल अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए, और वीकेंड को वो पूरा फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते आप पूरे मेहनत करते हैं और लेकिन ये जो वीकेंड होता है ये फैमिली टाइम होता है। फैमिली के लिए पूरा समय निकालिए, दोस्तों के लिए समय निकालिए, और अपनी पूरी जो है ना बॉडी की और माइंड की बैटरीज को रिचार्ज कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंड मिलते हैं फिर एक नए सफर पर। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन

0: नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। In West Bengal, senior BJP leader Subhendu Adhikari has been elected the leader of the BJP legislature party in West Bengal today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. BJP sources said Adhikari's name was proposed at the legislature party meeting and formally announced by Union Home Minister Amit Shah in the presence of newly elected BJP MLAs and senior party leaders.
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: The swearing-in ceremony of the new BJP government will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Government has a domestic

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি। ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

0: पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening.

0: प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य एकादश दिनांके गुजरात राज्य स्थितस्य सोमनाथ मंदिरस्य दर्शनं करिष्यति। एकपञ्चाशदधिक नवदशशततमे वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मंदिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः पञ्चसप्तति वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली इति अस्ति, या अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभाविकरोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामम् अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन

0: चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमन्त्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तराष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधिदलस्य प्रमुखान् सम्बोधयनासीत्।
1: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह्य एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति, कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
3: বাতৰি পিছতে পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। ষ্টুডিঅ'ত আছো মই ৰুজি মুদৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটি। আজিৰ বিষয় ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ। অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ সেউজী দাস বাইদেউ। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আৰু আগ ধৰিছে স্নেহা পাঠকে।
4: নমস্কাৰ। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যলৈ মই স্নেহা পাঠকে সমূহ শ্ৰোতাকে আদৰণি জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানত ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আমি বিশিষ্ট চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সেউজী দাসক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো। বাইদেউ, অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম।
5: ধন্যবাদ।
4: প্ৰিয় শ্ৰোতা, ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ সম্পৰ্কীয় এই আলোচনালানিৰ প্ৰথমটি খণ্ডত আমি ইতিমধ্যে প্ৰদূষণ আৰু ধূলিবালিৰ পৰা হ'ব পৰা বিভিন্ন ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। বাইদেউ, আজিৰ এই খণ্ডত আমি ফাংগাছ ইনফেকশ্যন বা খৰ এই ৰোগ সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ফাংগাছ ইনফেকশ্যন বা খৰত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে, গতিকে এই ৰোগৰ কাৰক, কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে আমি আজিৰ এই খণ্ডত জানিব বিচাৰিছোঁ।
5: হয়, ফাংগাছ ইনফেকশ্যন যিটো কমন ভাষাত খৰ বুলি কয়, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ছ'চাইটিত বহুত বেছি হৈ আছে।
4: হয়,
5: বহুত বেছি। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে অৱহেলা এটা, এক নম্বৰ পেচেণ্টৰ ফালৰ পৰা। বহুতে প্ৰথমতে কেতিয়াও ডক্টৰৰ ওচৰত নাহে, খৰৰ মেইন

0: টেনিছ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ কৃষ্টি হালৈয়ে ডিমুকুট অৰ্জন কৰে। প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ছোৱালী একক 14 আৰু 16 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফাইনেলত কৃষ্টি হালৈয়ে অসমৰে ফাগুনজ্যোতি পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ ফাগুনজ্যোতি আৰু পশ্চিমবংগৰ আনিয়া বিশ্বাসক 16 বছৰ অনুৰ্ধৰ ডাবলছ শাখাৰ ফাইনেলত অসমৰ মৃগা কে চাংমাই আৰু আৰিফা চৌধুৰীয়ে পৰাস্ত কৰে। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি দিল্লী অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। পশ্চিমবংগৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী কাইলৈ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিৰ উপস্থিতিত পৰহিলৈ অসম বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা বাছনি। ঢকুৱাখনা মৌঘুলী চাপৰি তিনিদিনীয়াকৈ ঐতিহাসিক ফাট বিহু উদযাপন। আইটা ৰেংকিং টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ কৃষ্টিহালৈ ডিমুকুট অৰ্জন আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত দিল্লীত আজি দিল্লী কেপিটেলছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী
1: নমস্কাৰ। আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰ ফিৰোজি। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया।

লোকগীতৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত শুনক শিল্পীৰ কণ্ঠত আন এটি লোকগীত।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছত 8:45 চামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মৈ লভলিন নিগম। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने

0: की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की

0: की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी

फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।